0: ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେବା। ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖଭୋଗ କାମନା ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ କଦାପି ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रूपये से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल

0: मई जून तक ट्रेन पटरी पर आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनाधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देशभर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरेना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी रे संवाद रिले कलु आकाशवाणी दिल्ली रु कार्यक्रम प्रचारित हेउची आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रु भेटी दोचु सकाळ रो भक्ति गीत रो कार्यक्रम वंदना।

अयोध्यापुरी में श्रीराम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावी बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग भड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन की सूचना

का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी, ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

0: सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर 6528 करोड़ रुपीस का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: रेलमंत्री कहिछंती अन्य एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति क्रमे अन्य सातटी रेल करिडोर को चारि लाइन विशिष्ट करा जिवो एथिरे 11000 किलोमीटर विकास कार्य लागि लक्ष्य धार्य करा जायछि। सेही रेलपथ गुडी कहिउछि दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई रूट। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प संपर्क में श्री वैष्णव कहते आसंता वर्ष यही बुलेट ट्रेन सेवा आरंभ करा जिवो।
0: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कैबिनेट रही निष्पत्ति द्वारा यात्री परिवहन व्यवस्था को द्रुत गति मिलवा सह संयोगीकरण व्यवस्था आहुरी दृढ़ हेबो एवं माल परिवहन क्षमता मध्य वृद्धि पाइबो। इस्माइल मुस्लिम समुदायर 50तम इमाम प्रिंस रहीम आगा खां पंचम गतकाली भारत यात्रा आसी नूआदिल्ली में पहुंची। भारतीय प्रतिनिधि मंडली स्वागत करते वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सूचना अनुजाई गस्त समय भारत में आगा खां विकास नेटवर्क अधीन सामाजिक उन्नति और ऐतिह्य संरक्षण एवं अन्यान्य क्षेत्र में विकासमूलक कार्य सहयोग वृद्धि कर। प्रिंस रहीम आगा खां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन निमंत्रण क्रमे चलित मास 15 तारीख पर्यंत भारत गस्तरे आसी आज से उपराष्ट्रपति साक्षात आलोचना करिवे। एही गस्त काल रे आगा खां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साक्षात आलोचना करिवार कार्यसूची रही। से स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह और वैदेशिक मंत्री डॉ एस जयशंकर साक्षात आलोचना करिवे। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय सूचना अनुजाई आगा खां अहमदाबाद, मुंबई एवं हैदराबाद गस्त कर आगा खां विकासमूलक नेटवर्क पदक्षेप संपर्क में समीक्षा करिवे। ईरान इस्लामिक रिवल्यूशनरी गार्ड कर्प्स आईआरजीसी प्राक अनुमति बिना प्रतिबंधित जलमार्ग अंचल को जहाज प्रवेश नहीं सतर्कता जारी कर आईन उल्लंघन क्षेत्र में कठोर पदक्षेप ग्रहण आईआरजीसी मुखपात्र हुसैन मुहेबी कहते प्रतिबंधित अंचल प्रवेश कले हरमुज प्रणाली मध्य प्रवेश पूर्व दि जा अनुमति प्रत्याहर कर से कहते आगामी दिन में ईरान पक्ष अंचल को प्रवेश से संपर्क में सूचना प्रदान ईरान तैल टैंकरगुड़िक आमेरिकार सद्य आक्रमण पर आईआरजीएस पक्ष सतर्कता जारी तबे सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे आमेरिकार केन्द्रीय कमाण्ड पक्ष दिया सूचना अनुजाई गत मंगलवार राति पांचटी अशोधित तैल नहीं जाउथिबा ईरान टैंकर को ध्वंस कर दिया। पूर्वरु अमेरिकी नौसेनार युद्ध जहाज उपरे आईआरजीसी आक्रमण जवाब रे एभली पदक्षेप नियाजाइथिबा कुहा जायछि। अन्य पक्षरे आठटी अमेरिकी टैंकर को ध्वंस करा जायथिबा आईआरजीसी दाबी करिछि। आपण माने संवाद सुनछन्ति आकाशवाणी रु। आर्थिक अपराध पाई गेमिंग एवं जुआ खेल भली प्लाटफर्मर वृद्धि पाउथिबा अपव्यवहार संपर्क में आर्थिक कार्यानुष्ठान टास्क फोर्स एफएटीएफ विभिन्न देश को चेतावनी जारी करिछि। एफएटीएफ रो सूचना अनुजाई अपराधी माने अर्थ स्थानांतरण पाई विभिन्न प्लाटफर्म व्यवहार करुछन्ति। देश में अणलाइसेंस प्राप्त गेमिंग गुडी को चिन्हट करा जायछि। संपृक्त अपराधी माने विभिन्न नेणदेण पद्धति नकली परिचय व्यवहार करी सेमानक नेटवर्क विस्तार करिथिबा एफएटीएफ सूचना देछि। विभिन्न देशर सरकार एभली अपराधिक कार्यकलाप रोकिबा लागि संदेहजनक नेणदेण एवं आतंकवादी मानंकु जोगाई दिया जाउथिबा अर्थर उत्स संपर्क में तदंत करी पदक्षेप नेबाकु एफएटीएफ सूचना देछि। केन्द्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल महिला उद्योगी सुजोग वृद्धि करिबा एवं आंतर्जातिक वाणिज्य क्षेत्र में महिला नेतृत्वाधीन उद्योगगुड़िक वृद्धि निमन्ते मिलित भाव कार्य करने लगे आह्वान देते गतकाल नूआदिल्ली में ब्रिक्स डब्ल्यूबीएल महिला नेतृत्वाधीन विकास सम्मेलन को उद्बोधन दे श्री गोयल महिला आधारित उद्योग विकास उपर गुरुत्वारोप कर भारत आर्थिक अंतर्भुक्ति शिक्षा दक्षता और जीवनधारण मान विकास उपर गुरुत्व महिला सशक्त करने लगी प्रचेष्टा जारी रखिछि।

0: ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଖି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଚମକେ କେମିତି? ପାଞ୍ଚଟା ବାଜି ତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଚୈତ୍ୟଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ହାଲଚାଲରେ ଶୁଣିବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଭେଟଘାଟରେ ରହିଛି ଓକିଲ ବାବୁ ହେବା କାଜେ କାଇପାଟ ପଡ଼ବାର ହେସି, ଏବଂ ଶେଷରେ ଶୁଣିବେ କାଇଗିନେ ବନ୍ଦାଡ ବାନ୍ତି ହେସି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ରେ ଭେଟିଦେବୁ ମାସିକ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜ୍ଞାନିକା। ଏଥିରେ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି 3D ଛତା, ପରେ ଓଜନ ସ୍ତର କ୍ଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଣତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ଶେଷରେ ଶୁଣିବେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:50ରେ ଭେଟିଦେବୁ ଭକ୍ତିଗୀତ। ଶିଳ୍ପୀମାନେ ହେଲେ ରୀନାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ହୃଦୟ ରଞ୍ଜନ ସାମଲ। ସକାଳ 9:00ରେ ଶୁଣିବେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡାଏଲ୍ ଆକାଶବାଣୀ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:30ରେ ଶୁଣିବେ NCERT ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉମଙ୍ଗ। ଏଥିଲା ଆଜି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ, ପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ସକାଳ 8:30ରେ ଶୁଣିବେ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଇନ୍କ୍ୟୁବେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ରିଲେ କରିବୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए। राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को

0: ही चार लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
5: Women, we open their bank accounts.
6: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
5: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा 4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक

0: बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्य बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने DNA किट, अर्भिक्रमक और DNA प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और

0: अन्य मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है। वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष। मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मॉनसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमियों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railway's 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's singles semifinal at US Open in New York. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at a total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav said, of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur and Jharsugura, 4th line Katni to Pendra Road, 4th line and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arnakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bangarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Omalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs.
3: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get connected by this project. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on, it has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet. So, the two major corridors where the connection points

0: President Anuradha Kumara Dasanayake as saying won't allow our soil to be used for anti-India activities. Delhi turns into a diplomatic fortress as BRICS leaders arrive, reports the Pioneer. Following the tragic Satyaniketan tragedy in Delhi, the Asian Age writes, Delhi surveys 1,200 PGs, launches big crackdown. In another story, the Asian Age says, BJP to mark Prime Minister's 25 years in service with birthday outreach. And finally, century on, Oxford set to return Naga ancestral remains. Well, the Tribune reports that 39 Naga ancestral skulls, some taken more than a century ago during British colonial rule, are to be brought home from Oxford to Nagaland. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight, specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's single semifinal at the US Open in New York. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani Kotak. प्रचार करुछु प्रायोजित कार्यक्रम एंटरप्राइज इक्यूबेशन प्रोग्राम
3: आम हातरे कौशल अछि भल उत्पाद भी अछि किंतु आम व्यवसाय कोन दिने बड बाजार रे पहुंच परिबो
4: नमस्कार मिशन शक्ति विभाग पक्षरो उपस्थापित सशक्त महिला समृद्ध ओडिसा रो ए विशेष आलोचना को आपन मानकु स्वागत करुछि मु आशुतोष
3: आ मु दिबालिन आज हम एभली एक विषय ऊपर आलोचना करबा जहाँ ग्रामीण महिलाओं को उद्योगों को आहुरी आगो को नबरे सहायक है बो।
4: अर्थात आचार प्रस्तुति सिलाई हस्तशिल्प खाद्य प्रक्रिया करण भली महिला परिचालित उद्योग गुड़ी को पाई कौन है एक बड़ो सुजोग?
3: निश्चय ओडिशा जीविका मिशन एवं आईआईटी भुवनेश्वर मिलित सहयोग रे परिचालित उद्यम अंकुरण कार्यक्रम माध्यम रे उद्योगी को मिलिबो आधुनिक प्रजुक्ति उन्नत पैकेजिंग ब्रांडिंग बजार संजोग एवं विशेषज्ञक मार्गदर्शन
4: अच्छा जदि के नुआ व्यवसाय आरंभ करबा को चाहंती से कोन ही कार्यक्रम रे आवेदन कर परिबे
3: ना एही कार्यक्रम टी सक्रिय थिबा महिला परिचालित उद्योग गुडी कर विकास पई आवेदनकारी अति कम रे 12 मास धरी सक्रिय थिबा स्वयं सहायक गोष्ठी रो सदस्य होइथिबा आवश्यक
4: एहा द्वारा केउ माने लाभान्वित होइ परिबे
3: व्यवसायर वार्षिक आय पई निर्धारित मानदंड पूरण करबाकु हेबो पंजीकृत व्यवसाय पई 20 लाख टंका गोष्ठी भित्तिक उद्योग पई 15 लाख टंका एवं व्यक्तिगत उद्योग पई 12 लाख टंका वार्षिक आय रहिबा आवश्यक
4: जदि जीएसटी एफएसएस एआई किंबा अन्यन्य पंजीकरण आवश्यक हुए सेति पई कोन सहायता रहिछि
3: एही प्रोग्राम माध्यम रे वैषयिक ओ आइनगत सहायता प्रदान करा जिवो एहा सह व्यवसाय परामर्श उत्पादर गुणवत्ता वृद्धि एवं बड़ बाजार सह संजोगर सुजोग मध्य मिलिबो
4: तबे उद्योग गुडी कर चयन केउ आधार रे करा जिवो
3: उद्योग गुडी को 100 मार्क रो मूल्यांकन आधार रे चयन करा जिवो एथिरे सर्वनिम्न 60 मार्क रखिबा आवश्यक संपूर्ण महिला को मालिकाना किंबा परिचालन रे थिबा उद्योग को 15 मार्क रो अतिरिक्त सुविधा मध्य मिलिबो
4: चयन परे केउ प्रकार रो सहायता मिलिबो
3: चयन करा जायथिबा 18 जन उद्योगी को प्रतियोगिता मूलक अनुदान पांठि अधीन रे निजरा व्यवसाय योजना उपस्थापन करी 15 लाख टंका पर्यंत अनुदान पाई परिबे एहा सह व्यवसाय विस्तार पई 0% सुद्ध रे सॉफ्ट लोन सुविधा मध्य उपलब्ध रहिछि
4: तबे आवेदन किपरि करा जिवो
3: एति पई ग्राम पंचायत स्तरीय संघ माध्यम रे किंबा सीधा सडक मध्य आवेदन करि परिबे
5: आवेदन रो शेष तारीख 21 सितंबर 2026
4: पुणि थरे मने रखंतु 21 सितंबर 2026
3: योग्य महिला उद्योगी माने शेष मुहूर्त को अपेक्षा न करी शीघ्र आवेदन करंतु आजिरो छोटो ग्रामीण उद्योग होई पारे आसंता कालीरो बड़ो ब्रांड
4: कौशल तांक

0: हेलो डायल आकाशवाणी।
1: दादा नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कुमारी दीक्षा गोपाल ग्राम सिनापड़ा पोस्ट परला थाना धर्मगढ़ जिला कोकांडी रु कहूथि दादा।
0: बहुत धन्यवाद। आपण भलो छथि?
1: हाँ दादा भलो अछि।
0: पूरा पूरी भलो ना टिके भलो?
1: पूरा पूरी भलो अछि दादा।
0: अच्छा कोंतु आज
1: एक नंबर अछि।
0: हां सबले एक नंबर रहंतु।
1: हां दादा।
0: अच्छा कोंतु आज को गीत सुनिबे?
1: मु गोटे भजन सुनिबी। भजन गाई छथि मैता अग्रवाल। से भजन अति होसी तारा मयूर चलिया जत सुख झुमक नाट तर नाली फुट को उठ हरे आम पुल कुआरे कान सही दी मत।

0: हेलो डायल आकाशवाणी।
1: हेलो आज्ञा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: आज्ञा बरगढ़ कटापाली स्वर्ण प्रभाकर कहूँ।
0: मुझे जान ली
1: आज्ञा
0: काना भलो तो
1: हाँ आज्ञा भलो तो भलो बोले हम संता भलो तो आज्ञा भल कहबार के हवा। आज्ञा
0: आमे खराब थिले मतो भल रे अछु बोल कहबा कथा नै कि
1: आज्ञा हाँ भल थिले भलो थिले तो बोले भलो चिंता करबा तो भलो हे हवा आ कोन नेगेटिव सब बोले चिंता करथिले सेमिति हे जिवा।
0: कौन तो आज केन गीत सुनबे?
1: आज्ञा गीत सुनमा जेहेतु समय रो चक बोले गुरुचे से गीतटा गुटे सुनमा एबे जदि समय पले जाई सेंसा तो मु कॉल भी करि पाइ नथानी लागि सतुर थरो कॉल करनी नि आज्ञा एबे लागि तो गीत सुनबा दैव दौड़ी ओडिया चलचित्र दैव दौड़ी रो गीत गुटे सुनबा भल लागे से गीतटा।

0: ଏଥିଲା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଡାଏଲ୍ ଆକାଶବାଣୀ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଥିଲେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें।
3: Women, we open their bank accounts.
4: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसोरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में दोनों अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन

0: मोराटा और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। कल क्वार्टर फाइनल में आठवीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने पांच सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। ग्यारहवीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने अमेरिकी खिलाड़ी एलेक्सिस मिशेलसन को हराया। कल महिला सिंगल सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन आर्याना सबालेंका का सामना तीसरी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद रे लेकुल आकाशवाणी दिल्ली रु आकाशवाणी जयपुर भेटी दौ केतोटी गीत हिंदी चलचित्र रू।

और प्यार हो गया एही चलचित्र पई कंठदान करथिले शिल्पी उदित नारायण गीत रचना करथिले जावेद अख्तर संगीत परिचालना करथिले नुसरत फतेह अली खान शेषरे समीर रचनारे शिल्पी माने हेले उदित नारायण एवं अलका याग्निक संगीत परिचालना हिमेश रेशमिया चलचित्र मैंने प्यार क्यों किया

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। करते हैं शुरुआत गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी जी द्वारा भेजे गए सुविचार के साथ। बीतता वक्त है लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। सचमुच कैसे नादान हैं हम सब। दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। आपके सुविचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच है श्रोता मित्रों, जीवन को जीने का हमारा दृष्टिकोण हमेशा संतुलित और परिपक्व होना चाहिए। सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे जी लिखते हैं, जल है तो कल है, वृक्ष है तो फल है। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से जी ने। मिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और सुल्तान अंसारी, और शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज के प्रेरक प्रसंग में एक बार फिर से हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर को, जब अंग्रेजी शासन का शिकंजा भारत पर कसता जा रहा था। हम आजादी के बहुत से अमर शहीदों के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम तीन ऐसे नौजवानों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, लगभग नहीं के बराबर। मित्रों, अगर मैं कहूं कि मात्र 18, 19 या 22 साल के तीन आजादी के दीवाने नौजवान अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित सरकारी भवन में घुस गए थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असंभव सा लगता है ना, लेकिन ऐसा हुआ। वे तीन जवान थे, बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। उन दिनों कोलकाता में अंग्रेजों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दफ्तर था जो राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिटिश शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी वहीं बैठते थे। ये 8 दिसंबर 1930 की घटना है। सामान्य दिन था। अंग्रेज अधिकारी अपने दफ्तर यानी राइटर्स बिल्डिंग में आ चुके थे और अपना काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण जगह होने के कारण वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत कड़ी थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सुरक्षा का घेरा तोड़कर बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता उस भवन में प्रवेश कर जाएंगे। लगभग दोपहर की बात है, वे तीनों युवा क्रांतिकारी भवन में घुस गए। उस दफ्तर में कई भारतीय भी काम करते थे, इसलिए उन्होंने यूरोपीय अधिकारियों जैसा पहनावा पहना और अंदर प्रवेश किया। उनके निशाने पर थे लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सिम्पसन, जो जेलों में भारतीय राजनीतिक बंदियों के साथ कठोर व्यवहार के लिए कुख्यात माने जाते थे। और देखते ही देखते तीनों ने लेफ्टिनेंट कर्नल सिम्पसन पर गोली चला दी। कर्नल की वही मृत्यु हो गई। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, राइटर्स बिल्डिंग के अंदर ही ब्रिटिश पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। तो श्रोताओ, आप जरूर जानना चाहेंगे कि क्या वे तीनों वहां से निकलने में सफल हुए? इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने प्रण कर लिया था कि किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे। वे समझ गए थे कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। तो नौजवान बादल गुप्ता और बिनॉय ने स्वयं को गोली मार ली। बादल गुप्ता की वहीं पर मृत्यु हो गई।

0: बिनॉय गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ दिनों बाद 13 दिसंबर 1930 को उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके साथी दिनेश गुप्ता घायल अवस्था में पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और 7 जुलाई 1931 को अलीपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। और अब जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद देश ने इन तीनों की स्मृति को कैसे जीवित रखा। कोलकाता के बेहद प्रसिद्ध डलहौजी हाउस का नाम बदलकर बीबीडी बाग यानी बादल, बिनॉय और दिनेश रखा गया और एक स्मारक बनाया गया। श्रोताओं, एक बात बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि हम इन क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान को आभार के साथ याद करते हैं, लेकिन हिंसा को जीवन का रास्ता नहीं मानते। हम बस उस दौर के इतिहास को उस समय के संदर्भ में समझते हैं। तो श्रोताओं, जब हम बीडीडी बाग का नाम सुने तो केवल उसे कोलकाता की एक जगह समझकर नजरअंदाज न कर दें। हम जरूर याद करें इन क्रांतिकारी युवाओं को, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। आजादी को केवल एक विशेषाधिकार की तरह ही नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व की तरह भी देखें, और जिन्होंने देश के लिए अपना आज दे दिया, हम उनके बलिदान को याद करके अपने आज को बेहतर बनाएं। तो श्रोताओ, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, देश के लिए शहीद हुए इन तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताएं। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बरसात और मेंढक। इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पशु पक्षियों और संपूर्ण जीव जगत का ख्याल रखना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।
1: बरसात और मेंढक।

0: सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा,
1: गाय गाय जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे।
0: गाय बोली,
2: मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं।
0: कमली और सोमारू चले घास लेने।
3: घास घास थोड़ी सी घास ले ले,
0: पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। घास ने कहा,
4: मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं।
0: कमली और सोमारू चले पानी लाने।
3: नदी नदी हमें थोड़ा पानी दे दो ना।
0: पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा,
4: बरसात हो तो मुझे पानी मिले।
0: कमली और सोमारू चले बादल लाने।
1: बादल तुम यूं मुंह लटकाए क्यों टंगे हो, थोड़ा बरस जाओ ना।
0: बादल बोले,
5: मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसें।
0: कमली और सोमारू चले मेंढक के

0: पास।
1: मेंढक बोले,
2: हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं।
3: जो हुआ उसके लिए माफ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा।
1: मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। नदी में पानी बहने लगा। कमली और सुमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और सुमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली।
4: तो बच्चों, सुना आपने, बरसात नहीं हुई तो सब परेशान हो गए। नदी सूख गई, घास सूख गई और दूध भी नहीं मिला। तो जरा सोचो तो बच्चों, यदि वर्षा नहीं होगी तो और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इसके बारे में अपने बड़ों से पूछो। और हाँ, याद है मेढक ने की थी एक शिकायत कि बच्चे उसे पत्थर मारते हैं। तो बच्चों, हमें पशु पक्षियों जीव जंतुओं को सताना नहीं चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ,
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बरसात और मेंढक।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में रूस के एक भालू से जुड़ी एक घटना के बारे में बताया गया है और ये संदेश दिया गया है कि हमें अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को पूरी तरह से पहचानना चाहिए।
2: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
3: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है। सोचिए जरा, बताइए तो।
2: अच्छा चलिए हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
3: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
2: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल हैं। एक बार उन जंगलों में आग लग गई

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहाँ के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं, तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।

0: बात स्पष्ट है। उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे

0: सीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: और अब सुनते हैं एक सुंदर गीत।
3: फूल सी गुड़िया हमारी,

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिले आकाशवाणी जयपुर लोकगीत क्रम में प्रचार करुचु दासकाठिया गीत आज एणतु चित्रसन शरण परेषण कर शिल्पी सनातन रणा और साथी।

0: ए मानस कि रे मन तोरे संसारे किछि नाही ए हे राम नाम पद ठु बळी बळे किछि नाही
1: पद केहि नाही
0: छाड़ो ए माया संसार रे पड़ी दशरथ नंदन घन जनक सुता हृदय चंदन मन।

0: ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଭକ୍ତି ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି।
1: ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଡ୍ରାଇଭ୍ 2.0 ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆପଣଙ୍କର ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଛି କି? ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ଆସିଛି ଏକ ସହଜ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା। କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଆପଣ ନିଜେ ଭାଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ବସିକି ସହମତିରେ ସହଜରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ହିଁ ନିକଟରେ ଥିବା କୋର୍ଟର ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କମାନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ।
0: ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
2: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ କନକଲତା। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
4: मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।

0: में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। मुंबई।
0: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869 जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ କେତୋଟି ଗଜଲ। ପ୍ରଥମେ ଶିଳ୍ପୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: और आइए अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी की रचना, स्वर लता मंगेशकर और साथियों के, फिल्म का नाम है मुगले आजम।

लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था मुगले आजम। गीतकार शकील बदायूनी थे और संगीतकार थे नौशाद साहब। गीतकार शकील बदायूनी थे। और आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। यह आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बिंदिया।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था बिंदिया। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों की और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आरती, आज तुम भी हो तो मेरे साथ तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
2: मंजरी, आपको, सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: और बताओ कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक।
1: आज हमारे क्या क्या विषय हैं?
2: विषय सीधे विषय पे आते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: तो आज हम विषय लेकर आए हैं घर की सफाई, क्योंकि त्योहारों का मौसम है मंजरी जी। तो ऐसा होता है ना कि जब त्योहारों का मौसम होता है तो साफ सफाई ये तो लगा ही रहता है। तो किस तरीके से हम घर की सफाई में लगते हैं और आसानी से सब लोग मान जाते हैं सदस्य घर की सफाई करने के लिए, या फिर नोक झोंक थोड़ी बहुत होती है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बहुत और अच्छा विषय है ना।
2: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे ना कि वो लोग भी हमें बताएं कि उनके घर में जब साफ सफाई होती है तो सारे लोग अपने आप अपना परिश्रम करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर कुछ कहना पड़ता है, नोक झोंक होती है, रूठना मनाना चलता है।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ उपयोगी टिप्स में बातें होंगे कि जब बनानी हो नई रेसिपी तो इसके अनुभव भी आप लिखें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है या क्या तैयारियां करती हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और मुझे कुछ कहना में है कि बस 5 मिनट बनाम घंटों की बातें,
2: जो अक्सर देखने में आता है।
1: आता क्या, हम लोग खुद ही करते हैं।
2: तो चलो ना।

0: सभी साथी छोटी छोटी सी यादों को ताजा करेंगे
1: कि आपके आप ऐसे किस इंसान को जानते हैं या किसको जानते हैं, हो सकता है आपको पड़ोसी ही हो जो 5 मिनट कहते हैं बस सब हम जा ही रहे हैं लेकिन फिर घंटों चलती रहती हैं बातें, तो उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत जोधरिया बाई बैगा जो की कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उनके बारे में हम बात करेंगे।
0: और आज है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बहुत ही गहन विषय है। लेकिन उससे पहले हम लोग सुनते हैं एक गीत।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में और आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जिसके साथ एक ऐसा शब्द जुड़ा है जिस पर बात करना आसान नहीं लेकिन बात करना बेहद जरूरी है। ये दिवस है आत्महत्या रोकथाम दिवस। आत्महत्या शब्द ही बहुत दुखद है और इसलिए इस बात की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और जब भी कभी ऐसी दिमाग में किसी के भी ये बात आती है कि हम अपने जीवन को समाप्त कर ले तो उनको सोचना चाहिए कि आपका जीवन जो मिला है जीने के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार विचार मंथन करें फिर आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं, अपनी समस्याएं जो है वो किसी और को बता भी सकते हैं।
3: बिल्कुल। और इस दिवस को जागरूकता दिवस बनाने की शुरुआत हुई साल 2003 में और अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सहयोग से की गई थी। और इस दिन का उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बातचीत को प्रोत्साहित करना और जरूरत के समय मदद लेने के महत्व को समझाना कि ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हो जाएंगे अगर आप किसी की मदद ले लेंगे, बल्कि मदद लेने से क्या होता है ना कि हमारी जो समस्या है जो हम उसको उस समय हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी परेशानी की वजह से, तो सामने वाला हो सकता है हमारी परेशानी का हल ढूंढ के में दे दे।
2: बिल्कुल आरती। और कभी कभी जीवन में परेशानियां इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगता है और ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि आपस में बातचीत की जाए। अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार उदास दिखाई दे और लोगों से दूर रहने लगे, अलग अलग सा अपने आप को रखे, निराशा की बातें करे या कहे कि वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है तो उसकी बात को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो घर के बच्चे हों चाहे कोई भी हो व्यक्ति आपके साथ का हो, हाँ मित्र भी हो सकता है। तो कभी भी कुछ ऐसा आपको या उदास भी आपको दिख रहा है तो आप उसकी उदासी को दूर करने के लिए उससे घुले मिले, उससे दिल की बात जानने के लिए आगे आइए जिससे वो अपनी बातों को आपसे कह सके और आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि भाई तुम्हारी बातें मैं अपने तक ही रखूंगा, है ना।
3: बिल्कुल। और किसी को भी अगर कोई अपनी परेशानी आपको बता रहा है तो उसे डांटने या उसकी परेशानी को छोटा बताने के बजाय, कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, तो ऐसा करने के बजाय उसकी बात को धैर्य और ध्यान से सुनना चाहिए, उसे इस बात का विश्वास दिलाना चाहिए कि वो अकेला नहीं है और हर परेशानी का हल शांति और समझदारी के साथ निकल सकता है। किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े बड़े समाधान जरूरी नहीं होते, कभी कभी किसी की बात को ध्यान से अगर हम सुन लेते हैं ना तो वो ही बड़ी बात हो जाती है, या फिर हम उसके लिए कुछ थोड़ा सा समय निकाल लें, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं और उसे ये महसूस कराएं कि वो अकेला नहीं है तो बहुत मायने रखती है।
2: बिल्कुल सही बात है, ऐसे में साथ बहुत जरूरी होता है किसी का भी। और इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि परेशानियों से जूझना मुश्किल हो रहा है, माता पिता परिवार के सदस्य शिक्षक मित्र या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से आप तुरंत बात करें। और अगर हमारी जानकारी में कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है तो कुछ सरकारी व निःशुल्क हेल्पलाइन सेवाओं का संपर्क भी किया जा सकता है।
3: बिल्कुल, आप संपर्क कर सकते हैं और आप इंटरनेट पर इसको सर्च कर सकते हैं। और साथ ही वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम तय की गई है जो कि है आत्महत्या पर धारणा को बदलना, और जिसका उद्देश्य इसके इर्द गिर्द के सामाजिक कलंक को कम करना और खुलकर बातचीत को शुरू करना है, जिससे कि बातचीत होने से हमारा तनाव भी कम होता है और हम अपनी परेशानियों का हल भी आसानी से ढूंढ सकते हैं।
2: बिल्कुल। और हम लोग सुन लेते हैं गीत।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री की, जोधैया भाई बैगा, जो कला से संबंधित है और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की रहने वाली। जोधैया बाई ने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय तक बेहद गरीबी और कड़े संघर्ष का सामना किया। 60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद उन्होंने रंग और कूची थामी और देखते ही देखते कला जगत का एक बड़ा नाम बन गई।
3: बिल्कुल। और जोधैया बाई, जिन्हें लोग जोधैया अम्मा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें बैगा चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर

0: जाना माना नाम है, एक मजदूर से चित्रकार तक पहुंचने का जोधैया बाई का जो मार्ग था वो बहुत ही संघर्ष भरा रहा।
1: बिल्कुल, और जब जोधैया बाई के पति मैकू बैगा का निधन हुआ उस समय जोधैया बाई के दो मासूम बच्चे उनके साथ थे और तीसरी संतान गर्भ में थी। अपने बच्चों के लालन पालन के लिए मजदूरी करते हुए जोधैया बाई ने अपनी तीसरी संतान एक बेटी को जन्म दिया।
0: बिल्कुल, और बेटी के जन्म के साथ ही जोधैया बाई को कमजोरी ने घेर लिया। तीन बच्चों की जिम्मेदारी ने उन्हें अपने ही शरीर की कमजोरी के साथ लड़ने को विवश कर दिया था। परिणाम स्वरूप बेटी के जन्म के साथ ही वो एक बार फिर जीवन के रण में दुखों से संघर्ष करने के लिए उतर पड़ी थी।
1: और पीठ पर मासूम बच्ची को बांधकर जोधैया बाई गाय भैंस बकरी चराने जाती थी। जंगल में वापसी में लकड़ियां बिन कर लाती थी और जिसका बोझ भी उनके अपने सिर पर होता था। गांव में लोगों के घरों को लीपना, आंगन और दीवारों को गेरू से सजाना, खेत में मजदूरी करना, यही उनके जीवन की भाग दौड़ थी। यानी बहुत ही संघर्ष भरा उनका दिन था।
0: बिल्कुल, और संघर्ष से जूझ रही जोधैया बाई के जीवन में बदलाव तब आना शुरू हुआ जब आशीष स्वामी ने लोढ़ा गांव में अपना स्टूडियो जगन तस्वीर खाना खोला और स्थानीय लोगों को अपने यहां काम पर रखा, जिसमें जोधैया बाई का बड़ा बेटा भी शामिल था। एक दिन आंगन लीपने के लिए वो अपनी माँ जोधैया बाई को स्टूडियो ले गया था और साथ ही जोधैया बाई ने अपनी ही शैली में उस आंगन को ऐसे लीपा और उसे गेरू और छुई मिट्टी से ऐसे सजा दिया कि उसे देखकर आशीष स्वामी इतना खुश हुए कि उन्होंने जोधैया बाई जैसी बुजुर्ग महिला से, और लेकिन साथ ही साथ वो उनसे काम कराने पर थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि आपने इतनी उम्र दराज महिला से कैसे काम कराया। और इस दौरान उन्होंने सुरेश बैगा ने, जो उनके बेटे थे जोधैया बाई के, उन्होंने बताया कि उनकी माँ अभी भी मजदूरी करती है
1: और आशीष स्वामी ने उन्हें अम्मा करके संबोधित किया और कहा कि अब से अम्मा मजदूरी नहीं करेगी बल्कि चित्र बनाएंगी। जोधैया बाई ने बताया कि जब आशीष स्वामी ने उन्हें चित्र बनाने का काम दिया तो वे घबरा गई थी। उन्होंने पहले तो साफ मना कर दिया कि ये लिखने पढ़ने का काम उनसे नहीं हो पाएगा। तब आशीष स्वामी ने उन्हें उनसे दीवार पर चित्र बनवाया। बाद में लकड़ी और सूखे कुम्भड़े, लौकी और तरोई पर चित्र बनवाए। जब उन्हें चित्र बनाने के लिए कागज दिया तो वे डर गई कि कागज और रंग दोनों ही खराब हो जाएगा, लेकिन आशीष स्वामी ने उन्हें थोड़ा डांट कर चित्र बनाने के लिए कहा।
0: बिल्कुल, और जब गुरुजी की डांट पड़ने लगी तो 70 साल की आयु के करीब पहुंच चुकी जोधैया बाई किसी मासूम बच्चे की तरह अपने घर में छिप जाती थी और उन्होंने उनके जो गुरुजी थे उनके घर जाते और उन्हें जबरन अपने स्टूडियो ले आते। उनकी पेंटिंग्स में बैगा समुदाय की परंपराएं, लोक कथाएं, देवी देवता और विशेष रूप से प्रकृति, जैसे कि महुआ का पेड़, जंगली जानवर और पक्षी एकदम जीवंत रूप में दिखाई देते थे
1: और उनकी बनाई पेंटिंग को देश विदेश में बेहद पसंद किया गया। उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भोपाल और दिल्ली के अलावा पेरिस, फ्रांस और मिलान, इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में भी आयोजित की गई। जब वर्ष 2022 में जोधैया बाई को राष्ट्रपति से नारी शक्ति सम्मान मिला था तब स्वर्गीय आशीष स्वामी की तस्वीर के सामने बैठ कर जोधैया बाई काफी देर तक रोती रही थी।
0: बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने उन्हें सिखाया था
1: जी,
0: उस जगह तक पहुंचाया था। फिर वर्ष 2023 में उन्हें राष्ट्रपति द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 15 दिसंबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में जोधैया बाई बैगा की उनके पैतृक गांव लोरहा उमरिया में निधन हो गया। उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि हुनर और सफलता के लिए उम्र कोई बंधन नहीं होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखो, जहाँ पर वो रह रही थी तो आसपास की जो चीजें उपलब्ध थी, जैसे तरुई बताया है उन्होंने, है ना, कुम्भड़ा है, तो इन चीजों पे वो चित्र बना रही थी। तो एक कहते हैं हाथ भी साफ हो जाता है और आपकी जो कला है वो धीरे धीरे निखर के सामने आती ही आती है। और जब उनके सोचो अगर चित्र वो देखो तो कैसा लगेगा ना कि कितनी सारी चीजें उन्होंने बनाई है उसमें।
0: बिल्कुल, तो और कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमारे पास ये साधन नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक बहाने की तरह से ली जा सकती
1: है। बात,
0: क्योंकि अगर हमारे अंदर एक करने का जज्बा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
1: हम सोचते हैं ना कि पहले इतने सारे ब्रश खरीद के लाएंगे या हमारे पास पूरे रंगों का डिब्बा होना चाहिए, तो इसकी जरूरत नहीं। अगर आपके पास दो रंग भी हैं तो आप उससे भी अपनी कला को शुरू कर सकते हैं।
0: देखिए, उन्होंने प्रकृति से ही कला को लिया, प्रकृति से ही रंगों को लिया और प्रकृति के समान पे ही उसका उपयोग किया।
1: प्रकृति में तो कितने सारे रंग है और कितनी सारी कला है। हम आसपास नजर दौड़ाएंगे तो लगेगा हम ये पत्ती भी बना ले, ये फूल भी बना ले, है ना। तो जब तस्वीरें

0: तो आरती तस्वीर को इतनी अच्छी होती है ना, लगता है कि उसको सीने से लगा के रख ले, है ना?
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब बात आती है कि घर में साफ सफाई की बात आती है तो बस लगता है कि
1: सारी तस्वीरों को तो नहीं रख सकते ना सीने से लगा के।
0: सही बात है। और जब घर में साफ सफाई की बात आती है तो लगता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए, है ना? तो हमारे जो श्रोता भाई लोग हैं, सखियां हैं, ये बहुत आसानी से हमें बता देंगे कि मतलब कहां से सफाई की जाए। तो हमारे साथी का संदेश हम उठा लेते हैं, लिखते हैं कि घर की साफ सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, वो रिश्तों का आईना है। जहां साझेदारी होती है वहां काम बढ़ जाता है और बोझ हल्का लगता है, लेकिन जहां इसे एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी समझा जाता है वहां धीरे धीरे नोकझोंक पनपती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि सफाई को ड्यूटी नहीं साझेदारी बनाया जाए। थोड़ी मदद, थोड़ी तारीफ और थोड़ा समय पर किया गया काम घर को भी साफ रखता है और मन को भी साफ रखता है। क्या बात आपने कही है, है ना?
1: बिल्कुल। एक और मैं साथी जो कहते हैं कि घर की सफाई बिना नोकझोंक के घर के हर सदस्य की भागीदारी से होनी चाहिए। इस बात पर एक गुजराती मुहावरा भी है, झाझा हाथ रलियामड़ा, मतलब एक हाथ के मुकाबले ज्यादा हाथ से काम सुंदर तरीके से और जल्दी पूर्ण होता है। इसके अलावा फिल्म नया दौर का गीत भी सही संदेश देता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना।
0: बिल्कुल, सफाई करते समय ये गाना जरूर गुनगुनाना चाहिए जिससे एकता बने। और फिलहाल तो हम लोग एक अंतराल लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं।

0: अंतराल के बाद फिर सभी का स्वागत है और आरती कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अगला संदेश क्या कहता है आरती, बताओ जरा।
1: अब हमारे एक श्रोता सभाई हैं जो हमारे साथी हैं, जो कहते हैं कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी प्रेम से बनता है। एक साफ सुथरा घर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए सफाई को लेकर आपस में नोकझोंक करने के बजाय इसे एक खुशनुमा साझेदारी में बदले। जब पूरा परिवार मिलकर हाथ बढ़ाएगा तो घर का कोना कोना तो चमकेगा ही, साथ ही आपसी रिश्तों में प्यार की चमक भी बढ़ जाएगी।
0: क्या बात आपने कही है, बहुत अच्छी अच्छी सी बातें लिखकर भेजी हैं। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई हो या रोजमर्रा के छोटे बड़े काम, कभी कभी इन्हीं बातों को लेकर घर में नोकझोंक हो जाती है, कभी भाई बहन में, कभी पति पत्नी में, तो कभी परिवार के किसी और सदस्य के बीच। और तुमने ये सब काम क्यों नहीं किया या मैं ही सब क्यों करूं जैसी बातें सुनाई दे जाती हैं। लेकिन हर नोकझोंक मन मुटाव नहीं होती। घर की साफ सफाई में आपसी सहयोग, समझदारी और प्रेम से काम आप लें और थोड़ी सी नोकझोंक में मुस्कान जोड़ दें और मैं की जगह हम को महत्व दें। भाई ऐसी अगर बातें होती है ना तो बेचारे जो हमारे सामान होते हैं ना, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि भाई ये लोग तो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, कब हमारे पास आएंगे, कब हमको पोछेंगे, है ना। तो भाई ये चीज है कि आप मुस्कुराएं एक दूसरे के साथ और आपस में हाथ बटाएं, है ना।
1: और एक साथ हमें कितना समय भी, सोचिए कितना समय भी बिताने को मिलता है। साथ में हम लोग काम कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, हो सकता है वहां पे गाने चला के अरे थोड़ी देर के डांस भी कर लें,
0: क्या
1: गुनगुना भी लें, बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: आज तुम्हारा ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है कि गाने बजा लें, अपना सुने बढ़िया गाने और मन करे तो डांस करें। लेकिन ये नहीं कि आपने लेके झाड़ू चालू हो गए डांस करना, तो
1: थोड़ी देर चलता है,
0: इधर उधर फैल गई गंदगी, वो भी ना करें। चलो अगला क्या संदेश है हमारे साथी,
1: जो लिखते हैं कि घर की सफाई हमेशा समझदारी और आपसी तालमेल से होनी चाहिए, क्योंकि नोकझोंक से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है और काम का बोझ कम नहीं होता। जब घर के सभी सदस्य मिलकर जिम्मेदारी बांटते हैं तो सफाई एक बोझ बनने के बजाय एक खुशनुमा पारिवारिक गतिविधि बन जाती है। पर कितना भी समझदारी अपना लो, नोकझोंक तो होना ही है। बिना नोकझोंक हुए, चाहे वो बचपन में भाई बहन के साथ हो या ससुराल में पति पत्नी हो, जब तक ये ना हो सफाई में मजा ही नहीं आता।
0: बात तो सही, बिल्कुल सही। और एक

कहावत लिखते हमारे साथी एक है कि सुंदर और स्वच्छ घर में ही खुशियों का वास होता है, लेकिन जब इसी घर में साफ सफाई की बात आती है तो अक्सर घरों का माहौल थोड़ा बदल जाता है। दिवाली की सफाई हो, वीकेंड का रूटीन हो या रोजमर्रा का झाड़ू पोछा, घर की सफाई अक्सर परिवारों में दो ही मोड़ लेती है, या तो ये बहस और नोकझोंक की वजह बन जाती है या फिर आपसी मेलजोल और साझेदारी का एक जरिया। तो भी हम तो सफाई के मामले में ये कह सकते हैं कि जो छुट्टी का दिन हो उस दिन आप एक बैग ले लीजिए और बस जो चीज आपको हर कमरे में जाइए, जो चीज आपको लग रही कि हटा सकते हैं तो उनको उसमें रखते जाइए, और शाम होते होते आप देखेंगे कि आपने बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं जो काम की नहीं है, बहुत टाइम से रखी हुई है, तो इस तरह से आप उनको हटा सकते हैं। तो और आप थोड़ा थक गए हों, ये नहीं कि लगातार काम ही करते रहिए, आपस में जाइए, एक चाय बना लाइए, पत्नी को पिला दीजिए, खुद पी लीजिए, अगर वो झगड़ा होते हैं तो रूठ गई है तो उन्हें मना भी लीजिए, है ना। और मनाना है तो भाई ये गाना भी सुना देते हैं, अगर पत्नी रूठ जाए तो वो पत्नी के लिए पति के लिए गा ले, और पति रूठ जाए तो पत्नी गा ले, तो ये गाना सुन लेते हैं, फिर हम आगे बातें करते हैं।

0: दिल
1: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: तो आरती, हमारी बातें चल रही थी ना, तो हमारे साथी एक लिख रहे हैं कि परंपरागत रूप से हमारे समाज में घर की सफाई का पूरा जिम्मा महिलाओं का या किसी एक ही सदस्य पर डाल दिया जाता है, और जब घर के बाकी सदस्य गंदगी फैलाने में तो वो आगे रहते हैं लेकिन समेटने के वक्त गायब हो जाते हैं, तब नोकझोंक की शुरुआत होती है। ये बात तो सही है कि हमारी सखियां बहनें सारा समेटती रहती है, उनके दोनों हाथ चलती रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, लेकिन कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, बल्कि बच्चे तो और फैलाने लग जाते हैं। तो कहना चाहिए कि सबको सहयोग देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाएं कि सफाई कितनी जरूरी है। आप जहां बैठते हैं, जिस कमरे में आप सोते उठते हैं, वहां पर सफाई रखिए, और अगर जहां पर खाना खाते हैं टेबल है तो उस जगह आप उसकी सफाई करिए। तो छोटे छोटे काम बांट देने चाहिए सभी को।
6: और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी बड़ा अच्छा मुद्दा है। घर की बहन की नोकझोंक, बहन से नोकझोंक हो जाती है, वो कभी पोछा लगा देती है तो हम जाले साफ कर देते हैं, जब कभी बर्तन मांजती है तो हम उसका फोन चलाने लगते हैं, तब तो आपकी अच्छी तरीके से डांट पड़ती होगी।
5: सही बात है, फोन चला रहे हो काम
6: वो भी उसका।
5: और कई बार ऐसा मुंह से निकल जाता है कि हम इतने भूतों की तरह जुटे हुए, तुम लोग काम नहीं कर रहे हो साथ में, तो वो चीजें भी कभी कभी हंसी मजाक में भाई बहनों के बीच में निकल जाती है। तो हमारे साथी इसी तरह और लिखते हैं कि भाई जब घर की सफाई या नोकझोंक या साझेदारी की बात होती है तो मेरी पुस्तकें उनको वैसी लगती हैं, अजीब सी लगती है, और पुस्तकों की सुगंध उनको बदबू लगती है, मेरा रीडिंग रूम उनको कबाड़खाना लगता है, घर का माहौल ऐसा ही है, जोड़ी हमारी जमीन न जाने कैसे जानी, अब तो हम हैं अंग्रेजी, तुम लड़की हिंदुस्तानी। और इस तरह इन्होंने गीत भी लिखा है कि भाई मुझे ये गीत सुना दीजिए। तो ये चीज तो बड़ी ऐसी चलती रहती है नोक जो घर में होती है सफाई के समय। तो
6: और साथ ही हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि घर की सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, मेरी छुट्टी का दिन हो और घर की सफाई का दिन हो तो मुझे सफाई का सामान पकड़ा देती है, और ड्यूटी पर धर्म पत्नी मुझे मतलब सफाई की ड्यूटी पर लगा देती है। अगर मैं आनाकानी करूं तो मुझे मेरी मनपसंद अदरक इलायची वाली चाय का लालच देती है, और कहती है कि जितनी बार भी पियोगे बना दूंगी, और मैं राजी भी हो जाता हूँ, भाई चाय मिलेगी तो राज करना ही पड़ेगा काम।
5: मेरी कोई अगर घर का इतना सारा काम कर रहा है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसके लिए एक कप चाय बना दे, उसको ताजगी महसूस होगी तो फिर वो और ज्यादा काम कर सकती है ना। और हमारे साथी लिखते हैं कि घर की साफ सफाई, नोकझोंक या साझेदारी, भाई वे घर अब कहाँ हुए जब लोग ही फ्लैटों में रहने लगे हैं, नहीं अपितु मियां बीवी दोनों ही नौकरी पेशा होते हुए भी इस कल्चर से प्रभावित होने लगे हैं, फिर कहीं कोई कमी नजर भी आई तो उसके लिए दाई तो है ही ना। लेकिन ठीक है, हम किसी भी घर में रहें, चाहे वो फ्लैट में रहें, चाहे छोटे से घर में, चाहे बड़े से घर में, सफाई तो देखिए सब जगह ही होनी पड़ती, नहीं
6: थोड़ा बहुत काम हमें अपने आप करना ही पड़ता है।
5: वो कितना भी आप किसी से करवा लें, लेकिन एक बार तो एक रविवार को जुटना पड़ेगा।
6: सफाई होती है, गहन सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है
5: ना। तो एक गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं।
7: अरे अरे ए ए ए

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती, जो हम बात कर रहे थे ना, तो हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि हम तो यही करते हैं, गानों के साथ काम या फिर भजन के साथ खाना बनाना। क्या बात है। मतलब बहुत ही फिर तो स्वादिष्ट खाना बनता होगा, क्योंकि भक्ति के रस में डूब के अगर आप एक रसेदार व्यंजन बना रहे हैं
3: बिल्कुल,
2: तो उसका स्वाद ही अलग होगा।
3: वो हमारे जो मन की सोच होती है ना, वो हमारे खाने में भी आ जाती है।
2: बिल्कुल आ जाती है। और भाई जब हम खाना बना खा के जाते हैं, बाहर निकलते हैं और या कोई घर पे आ गया तो बातें करने लग जाते हैं, देख रहे हैं कि भाई वो सामने वाला कितना बोल रहा है। तो जब किस्से शुरू होते हैं ना, तो उनका अंत ही नहीं होता, एक दूसरे से बातें करते हैं। और जब खाते करते उन्हें बाहर छोड़ने जाते हैं तो भी दरवाजे पे खड़े होकर के घंटों बातें चलती है। और कई बार सोच भी रहे हैं कि भाई अच्छा आप चले, अरे रुकिए भाभी जी ये किस्सा और ये भाई साहब ऐसी बात, तो ये और चलती रहती है।
3: बिल्कुल। और मंजरी, अच्छा ये चीज देखिए, अक्सर

0: तो भाई देखो, हमारी जो सखियों ने लिखे हैं कि उपयोगी टिप्स में लिखा है कि रेसिपी में लिखी सभी सामग्रियां, मसाले, सब्जियां, तेल आदि पहले इसे निकालकर काउंटर पर रख लें, चॉपिंग पहले कर लें, सब्जियों को काटना, प्यूरी बनाना या सूखा मसाला पीसना, ये सारे काम गैस चालू करने से पहले ही पूरी तरह से कर लें। बदलाव से बचे, पहली बार में सामग्री को किसी दूसरी चीज से बदलने की कोशिश ना करें, जो लिखा है वही इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल। और हमारी एक साथी जो हमें एक रेसिपी लिखकर भेज रही है कि जैसे कि पिज्जा रोटी है तो रोटी चाट और आप बचे हुए रोटी से आप सैंडविच बना सकते हैं, वो भी खाने में बेहद स्वाद लगते हैं। इसी तरह आपको बचे हुए चावल से नई रेसिपी बनाने की टिप्स देती हूँ। चावल के पकौड़े, चावल को आप फ्री करके करके खा सकते हैं और फ्राइड राइस भी बना सकते हैं उसको, और फ्राई करके भी खा सकते हैं, फ्राइड राइस भी बना सकते हैं और बेहद स्वादिष्ट लगते हैं।
0: और हम गीत

0: नमस्कार दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप ही की बातें हैं, आपकी ही पसंद है, आप ही की यादें हैं और आप ही की फरमाइश भी है। तो आइए कुछ बातें करें, जुड़े आप सब से आपके अपने खूबसूरत सफर से। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो
1: जी, हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार, अरे कौन बोल रहे हैं आप।
1: जी मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं?
1: जी मैम मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: जी मैम अभी तो खाली है बस, आपका सीजन चल रहा है।
0: अच्छा
1: जी, अभी गांव में थोड़ा बहुत काम लगता है तो कर लेती हूँ।
0: जैसे क्या काम कर रहे हैं गांव में? कौन सा गांव है आपका?
1: जी मेरे गांव का नाम कीरतपुरा।
0: कीरतपुरा
1: जी।
0: अच्छा, कैसा है आपका गांव? अपने गांव के बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको?
1: जी मैम यहाँ पे ज्यादा सुविधाएं तो नहीं है, वैसे तो देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा कीचड़ हो जाता है बरसात के सीजन में। हाँ, तो हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव, वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, तो वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं।
0: अच्छा,
1: वहाँ पे हनुमान जी को कहते हैं कि पसीना भी आता है उनकी मूर्ति से।
0: अच्छा, ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग कहते हैं।
1: जी मैम वहाँ पे उनको एसी लगाना पड़ता है उनके कमरे में, गर्मी में किसी में इतना पसीना निकलता है।
0: अच्छा अच्छा,
1: मेरी आपसे तो मैंने पहले बातचीत हुई थी।
0: अच्छा, कब हुई थी?
1: जी मैम मेरी बात जून को हुई थी आपसे।
0: अच्छा, आपने तारीख को नोट कर लिया या आपको याद है ये तारीख?
1: नहीं मैम तारीख याद है, आपसे बात हुई है, कैसे भूल सकते हैं हम लोग।
0: बहुत सुंदर। किस तरह के कार्यक्रम सुनते हो? विविध भारती में कौन से कार्यक्रम पसंद आते हैं आपको?
1: जी आपका इस सखी सहेली कार्यक्रम और आपका जिज्ञासा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: अरे वाह, जिज्ञासा पसंद है यानी आपको साइंस पसंद है।
1: जी मैम।
0: बड़ा गंभीर कार्यक्रम है वो तो, और उसमें जानकारी मिलती है ना, ज्ञान विज्ञान को लेकर।
1: मैम
0: और सखी सहेली में आप सखाओं को क्या पसंद आता होगा?
1: जी मैम हम तो बचपन से ही सुन रहे हैं विविध भारती सर, तो हम तो बचपन से ही सखी सहेली सुन रहे हैं। और ऐसा है कि जानकारी तो कहीं से भी मिले लेनी चाहिए।
0: हाँ ये बात अलग है कि जानकारी आपको कहीं से भी मिल सकती है ना।
1: जी
0: तो कभी रसोई में घुसकर खाना बनाया है आपने? जब सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हैं तो उसमें तो हम व्यंजनों की बात भी करते हैं, सखी सहेलियों की बात भी करते हैं।
1: जी मैम खाना बनाना तो नहीं आता लेकिन सुन लेते हैं।
0: खाना आता है बस, है ना।
1: जी मैम।
0: हाँ, और खाने में नुक्स निकालना आता है कि आज नमक नहीं डाला, आज पानी ज्यादा डाल दिया, आज तेल ज्यादा डाल दिया, मिर्च कम डाल दी, ऐसा?
1: ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? कौन सा गीत आपके दिल के सबसे करीब है?
1: जी मैम फिल्म का नाम है कुदरत का कानून, उसमें एक गीत है तुझे कितना प्यार करें।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आप मंदाकिनी दीदी बोल रहे हो?
0: हाँ जी जी बिल्कुल, आप बताइए अपना नाम।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्मा सिंगर बात कर रही हूँ दीदी। तीन महीने हो गए दीदी मेरे कॉल को, तीन महीने से आपके आपके साथ ही बात हुई जो हुई थी दीदी मेरी।
0: अरे वाह, क्या नाम बताया आपने अपना? पद्मा।
1: पद्मा सिंगर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है आपका तो।
1: गाना सुनना है दीदी, आप कैसी हो दीदी?
0: मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छी हो गई हूँ।
1: मेरे को गाना सुनना है दीदी।
0: गाना तो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बताइए आज आप क्या कर रही हैं, कितनी बिजी हैं, आज दिन भर आपने क्या काम किया, कुछ तो बताइए।
1: आज तो दिन भर में इतना काम करी दीदी का, मेरी बेटी आई थी कल तो उन राखी बांधने के लिए, तो मेहमान का खाना बनाया दीदी, जो आए थे अपने मेरी मम्मी पर आई थी।
0: अरे वाह,
1: हाँ बहुत सारा काम करी दीदी आज मैंने।
0: थक गई फिर?
1: थक गई आज, मेरे भैया अपन आए थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जब बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो तो क्या करती हो, विविध भारती सुनने लगती हो?
1: नहीं तो दीदी हम तो रेडियो सुनते ना दीदी, हेलो फरमाइश सुनते हो दीदी?
0: अच्छा
1: हाँ, चालू रहता है दीदी मेरे यहाँ।
0: अरे वाह, सुबह से शाम तक चालू रहता है विविध भारती?
1: चालू रहता है, सुबह हमारे अमरावती ये केंद्र के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: हाँ।
1: और 11 बजे से हमारा विविध भारती चालू रहती है।
0: अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने इतना सारा खाना बनाया त्योहार के लिए, क्या क्या बनाया था खाने में?
1: मैंने दीदी रोटी बनाई, चावल बनाई, दाल बनाई, पूरन पोली बनाई दीदी।
0: पूरन पोली तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: आओ दीदी खाने को।
0: हाँ, अब मुझे लगता है आना पड़ेगा आपके घर ना पूरन पोली खाने मुझे।
1: आओ ना आओ ना, अभी अमरावती आएगी ना हमारे घर आना दीदी।
0: पक्का पक्का, बिल्कुल आऊंगी।
1: हाँ दीदी,
0: आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप बहुत खुश भी लग रही हैं, इतनी व्यस्त होते हुए भी थकान भी नहीं लग रही है आपकी बातों में, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो थकान रोज इसलिए रखती दीदी, रोज मैं काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, और मेरे जो पोता पोती है
0: हाँ।
1: उनको इससे ले जाना, छोड़ना, लाना, ये सब मैं करती हूँ दीदी।
0: अरे ऐसे तो आधी थकान दूर हो जाती है बच्चों के साथ,
1: दूर हो जाती दीदी। हाँ।

0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी आप?
1: डॉन फिल्म का चित्रपट है दीदी।
0: डॉन फिल्म का कौन सा गाना?
1: अरे दीवानो मुझे पहचानो।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। अरे दीवानो।

0: है कैसा है कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो मैं हूँ डॉन।
1: हेलो,
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
2: न मांगी कोई दुआ, न कोई गुजारिश की, न कोई फरियाद, न कोई नुमाइश की, जब झुका सर सजदे में खुदा के, तो हेलो फरमाइश में जिनसे मेरी बात हो रही है उनकी खुशी की ख्वाहिश की।
1: अरे किनसे बात हो रही है आपकी हेलो फरमाइश में?
2: मंदाकिनी जी से।
1: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमारी खुशहाली की दुआएं की है। बताइए अपना नाम, बताइए कहाँ से बोल रही है, ये तो बताइए।
2: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: कैसे हैं आप बताइए मोहम्मद रफी साहब?
2: बहुत अच्छे मैडम, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं।
2: जी जी।
1: क्या कर रही हैं इन दिनों?
2: इन दिनों मैडम सिलाई का काम करते हैं हम लोग।
1: अच्छा, क्या सिल रहे हैं?
2: घनी बैग का काम है।
1: बैग का?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, आपका नाम इतना खूबसूरत है, क्या याद आता है आपको अपने नाम के साथ?
2: मेरे को मैडम रफी साहब याद आते हैं और उनके गाने याद आते हैं।
1: रफी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
2: ये उम्मीद का है ना, मुझे इसके तुझे से, फिर राजा रंग का, फिरकी वाली, बहुत सारे गाने मैडम उनके
1: पसंद आते हैं। अच्छा, आपको घर में किस नाम से पुकारते हैं? आपका घर का नाम क्या है?
2: घर का नाम बबलू है मैडम।
1: बबलू, बड़ा प्यारा नाम है ये बबलू, है ना? तो बताइए, जब आप छोटे थे आपको बबलू कहा जाता था, यानी आप बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको तुरंत खुश कर देती थी?
2: मुझे तो मैडम खिलौने मिल जाते थे तो बहुत खुशी हो जाती थी मैडम।
1: अच्छा, खिलौने मिलते थे बचपन में? आपके माता पिता खिलौने लाके देते थे आपको?
2: हाँ, मेरी मम्मी ने बहुत ध्यान रखा मेरा और खिलौने भी मुझे ला के दिए थे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती थी।
1: क्या क्या खिलौने थे आपके पास बताइए?
2: वो गाड़ी आती थी चार पहिए की प्लास्टिक की मैडम, वो और बंदूक आती थी वो।

0: लड़के लोगों के पास बंदूक नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता है, जभी तो हमने जानना चाहा।
1: चाबी की मोटर आती थी ना जो उसको चलाते थे अपन।
0: हाँ,
1: चाबी की मोटर, उसको चाबी भर दो फिर छोड़ दो तो वो बहुत दूर तक जाती थी।
0: उसको देखकर तो मजा आता
1: है। बचपन की यादें में कभी बोला नहीं सकता मैं।
0: लेकिन अगर अब आप अपने बच्चों के बचपन की बात करें तो क्या कहेंगे, आपके बच्चे हैं क्या, लाके देती हैं उनको खिलौने लाके देते हैं?
1: शादी नहीं
0: है। अरे आपकी तो शादी नहीं हुई। चलिए तो आप भी अपने बच्चों के बचपन का जो है ख्याल रखिएगा, जब आपकी शादी हो जाए बच्चे हो जाए तो उनका जो बचपना है उसे कभी दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि बचपन से सुंदर जो है समय कभी नहीं मिल पाता।
1: जी सही है।
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप बताइए?
1: फिल्म का नाम है हम पांच, मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया है और गाने के बोले का जानू मैं सजनिया चमके ही कब चंदनिया गरमा गरी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: का जानू मैं सजनिया, का जानू, का जानू मैं सजनिया चमकेगी कर...

0: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से। मैडम
0: कैसे हैं लोकेंद्र जी?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और विविध भारती को, प्रसार भारती मोबाइल ऐप और जो डीटीएच पर भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहते हैं विविध भारती के।
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है मेरी, बहुत पहले।
1: हाँ आज से करीब 6 महीने पहले हुई थी मेरी बात आपसे।
0: कैसे हैं बताइए, इन 6 महीनों में क्या कुछ खास किया आपने?
1: खास तो मैडम जी मेरा तो हेयर कटिंग सैलून का बिजनेस है और मैं हेयर कटिंग सैलून पर काम करता रहता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। आपके अलग जो भी विविध भारती के सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे मन चाहे गीत है, हेलो फरमाइश है, सखी सहेली है। सखी सहेली में वो प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, जैसे कि वो खाना बनाने की टिप्स बताते हैं ना अलग अलग, खाना अलग अलग किस प्रकार के भोजन व्यंजन बनाते हैं वो अच्छा लगता है। और सभी प्रोग्रामों की मुझे जो अपडेट है वो अपडेट फेसबुक पेज के माध्यम से मिल जाती है।
0: इसका मतलब आप खाने के शौकीन है तभी आपको वो पसंद है?
1: बिल्कुल अच्छा लगता है मैडम जी खाना, और मैं खाना घर में बना भी लेता हूँ, वाइफ के साथ में उनको हाथ बटा देता हूँ। सिर्फ मुझे रोटी बनाना नहीं आती, बाकी सभी व्यंजन बना लेता हूँ।
0: अरे क्या क्या व्यंजन बनाते हैं बताइए, पत्नी का हाथ कैसे बटाते हैं?
1: हमारे यहाँ उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध भोजन रहता है दाल बाफला और लड्डू। ये मालवा अंचल का मतलब सबसे प्रसिद्ध भोजन है, ये भी बनाने में उनका साथ में सहयोग कर देता हूँ। और जैसे दाल चावल फ्राई है, दाल फ्राई है और मटर पनीर की सब्जी है, ये सब प्रकार के

0: इंजन में खुद बनाता हूँ।
1: अरे क्या बात है, कहाँ से सीखा आपने?
0: मैडम जी ये तो सब मैंने आपके यहाँ से जो टिप्स मिलते हैं उसको देखते हैं, और बाकी जो घर में कभी कभी महिलाएं भी बनाती हैं तो उनको देखकर हम भी सीख जाते हैं।
1: सही बात है ना। और जिनको खाने का शौक होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से रेसिपी देख ही लेते हैं कि किस तरह से कौन सा व्यंजन बनाया जा सकता है ना।
0: और खास करके मेरी एक खासियत है कि मैं सिर्फ घर का बना भोजन ही खाता हूँ। मैं बाहर मतलब डिनर पे या कहीं बाहर जाता हूँ ना,
1: हाँ,
0: तो मैं बाहर का व्यंजन इतना ज्यादा अवॉइड करता हूँ सभी चीजों को, क्योंकि बाहर के जो व्यंजन रहते हैं खैर लगते तो लुभावने हैं, जैसे पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें, पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहते हैं, क्योंकि घर का जो शुद्ध शाकाहारी भोजन आप खाएंगे तो उससे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। आज मेरी 52 साल की उम्र है पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, ना थायराइड है, बीपी है, शुगर है, कुछ भी नहीं है।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पिज्जा बर्गर खाने के हम जितने शौकीन हैं उतनी ही बीमारियां हम पाल भी ले रहे हैं ना। खासतौर से हमारे बच्चे जो फास्ट फूड के शौकीन है, आए दिन उनको फास्ट फूड चाहिए ना, स्ट्रीट फूड चाहिए, तो माता पिता को चाहिए कि घर में ही बना के वो खिलाएं ताकि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो। आप 52 ईयर्स ओल्ड हैं, आपने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
0: आज उज्जैन में महाकालेश्वर जी की सवारी निकल जाती है, शाही सवारी।
1: अच्छा, हाँ,
0: और आज शाही सवारी उज्जैन में निकल रही है, बाबा महाकालेश्वर जी खुद दर्शन देने के लिए पालकी में सवार होकर जनता का हालचाल जानने के लिए निकल रहे हैं, और वो सवारी निकल रही है आज।
1: वाह, बहुत सुंदर दृश्य होगा और काफी लोगों की तादाद होगी, भीड़ होगी, काफी लोग आजू बाजू चलेंगे।
0: बिल्कुल मैडम जी, और ये उज्जैन महाकालेश्वर के जो स्थान है ये तो ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है ही सही, पर आज जो शाही सवारी निकली है इसमें करीब मैंने 5 लाख से यात्री जो उज्जैन में दर्शन करने के लिए आए।
1: बहुत बड़ी बात, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि कितना खास दिन हम मना रहे हैं और उज्जैन में खास तौर से इतने श्रद्धालुओं की भीड़ है।
0: जी जी मैडम
1: जी, तो बताइए आपकी पसंद का कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: गाना सुनना है मुझे लता मंगेशकर जी की आवाज में, फिल्मों का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, और इसमें एक गाना है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।
1: अरे बहुत सुंदर गाना है लता जी की आवाज में, चलिए आप सुनना चाहते हैं ये टाइटल सॉन्ग सत्यम शिवम सुंदरम।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ धन्यवाद दीदी, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ।
0: राजेश जी स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: कैसे हैं?
1: बढ़िया दीदी, यहाँ प्रिंटिंग प्रेस पे बैठा हुआ, पानी भी गिर रहा है अभी।
0: अच्छा अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस।
1: बारिश जोरदार हो रही है, एक घंटा हो गया है।
0: अरे वाह, अच्छी बात है ना।
1: मतलब हाँ, मतलब एक महीने से पानी नहीं आ रहा था यहाँ पर। हाँ, और हमारे परिवार के लोग है जो करीब 40 वर्षों से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: अच्छा, कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप विविध भारती के?
1: जैसे तो मनचाहे गीत अभी चालू कर दिया आपने।
0: आपने पत्र लिखा मनचाहे गीत में?
1: बिल्कुल, किश्तियाँ बहुत जारी है, लेकिन उसका समय कम है, डेली किया जाए। और हेलो फरमाइश का समय भी जैसे आपने एक ही दिन कर दिया, ये आप 2 दिन ही किया जाए।
0: चलिए तो आप प्रिंटिंग प्रेस में काम करके समय निकाल लेते हैं हमसे फोन करने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारे कारीगर काम करते हैं ना, हम तो क्या है डायरेक्शन देते हैं, जैसे मतलब हमारे पास 2-3 कारीगर है। और बाकी के समय हम जैसे सुनते रहते हैं, समय रहता है तो। फरमाइश कार्यक्रम हमारा खास है, जैसे मनचाहे गीत है, इसके बाद ये हेलो फरमाइश है।
0: हाँ हाँ, ये सभी कार्यक्रम आपको पसंद है बिल्कुल।
1: हाँ
0: तो बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं?
1: आज गीत है ये उजाला पिक्चर का झूमता मौसम मस्त महीना, जो के जय किशन साहब की पुण्यतिथि है।
0: जी जी,
1: तो उनका बनाया हुआ गीत है ये, तो वो नहीं सुनवा दीजिए, और हमारे साथ में हमारे परिवार के लोग भी सुन रहे हैं इस गीत को। शांति महाजन है, मुकेश महाजन है, नीता महाजन है और राकेश महाजन है।
0: चलिए तो आप सभी मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत
2: झूमता मौसम।

0: आपकी दोस्ती ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप अनजान है, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, क्योंकि आपकी दोस्ती ही मेरी पहचान है।
1: क्या बात है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में अपना बताइए, अपने बारे में आप कौन हैं?
0: मंदाकिनी मैडम जी नमस्कार, सबसे पहले तो आपको
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। अपना नाम बताइए हुजूर।
0: उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ मैडम।
1: दिलीप सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: बहुत ही बढ़िया हूँ मैडम, आज आपसे बात हो गई तो और भी अच्छा हो गया मैडम।
1: अरे पहले भी शायद आपसे बात हुई भी है हमारी, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है।
0: बिल्कुल 18 जून को बात हुई थी आपसे मेरी 2025 में, उसके बाद आज हो रही है।
1: चलिए तो अच्छी बात है कि आपकी दोबारा हमसे बात हो रही है। और कैसा है आपका शहर?
0: मैडम
1: आपका शहर बताइए।
0: बहुत ही बढ़िया एकदम मैडम।
1: सही बारिश हो गई है जितनी उम्मीद थी?
0: बारिश अभी हुई नहीं है, एक महीने से कल हुई शाम को आधा पौन घंटा, थोड़ी ठीक हुई लेकिन उससे थोड़ी उमस हो गई है।
1: बिल्कुल सही,
0: अभी और आसान है, झीलें अभी खाली है।
1: बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर बारिश होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, जो झीलें भर जाती
0: जी।
1: लेकिन पर्यटक काफी आए होंगे घूमने?
0: पर्यटकों की तो धूम मची हुई है मैडम।
1: लेकिन इस गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता होगा ना?
0: फिर भी उनको जरा भी चिंता नहीं रहती है।
1: हाँ हाँ, खैर घूमना तो एक इतना जानदार और शानदार काम है कि आदमी सब कुछ भूल कर निकल पड़ता है घर से, है ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: आपको यात्रा पे कहीं जाने का मौका मिला है?
0: जी अभी कुछ समय पहले ही होके आया था मैं उज्जैन महाकाल की नगरी।
1: अच्छा,
0: वहाँ हमारे प्रिय मित्र लोकेंद्र वर्मा जी से मुलाकात करके आया। बड़ा ही अच्छा लगा, वो भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गया।
1: अच्छी बात है, दो मित्र मिलेंगे तो खुश होना ही चाहिए। तो क्या लगा इंदौर जाकर महाकाल के दर्शन करके जब आप लौटे तो क्या महसूस किया आपने?
0: वहाँ का एक आनंद ही अलग था मैडम, जिधर देखो उधर मतलब महाकाल की नगरी में एक तो महाकाल के जो नारे थे वो बड़े ही एकदम मन को शांति और सुकून पहुँचा रहे थे, उसमें सब कुछ भूल गया मैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, आप जिस भाव को लेकर गए थे उससे कहीं ज्यादा आपको महसूस हुआ है ना?
0: अभी वापिस मानस बन रहा है इसी महीने में।
1: चलिए तो आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे गाना जानना चाहेंगे, कौन सा गाना आज आप सुनना चाहते हैं?
0: देवानंद साहब की फिल्म का है और रफी साहब की आवाज का गाना है। फिल्म का नाम है काला बाजार और गाने के बोल है खोया खोया चांद खिला आसमान आंखों में।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मोहब्बत की समा जला कर तो देखो, मोहब्बत की समर तो देखो, दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
1: दिल की दुनिया सजा कर तो देखो, तुम्हें हो ना जाए मोहब्बत तो कहना, जरा एक बार हमसे नजरें मिलाकर तो देखो।
0: क्या बात है, क्या बात है। हमारे सभी श्रोता सब शायर, नगमा निगार, गीतकार हैं।
1: बिल्कुल मैम, ये विविध भारती की देन है, जो कि हम लोग इतना टैलेंट और इतनी खूबसूरत अंदाज से बोलना सीख गए आप लोगों को देख देख कर।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। बताइए अपना नाम, कहाँ से बोल रहे हैं, अपनी जानकारी दीजिए हमें।
1: मैं ग्रामा पोस्ट वक्तेना डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज, यानी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बदायूं शहर से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे।
0: अपनी जगह जो है बदायूं, इसके बारे में बताइए। नाम हमने बहुत सुना है, लेकिन इसके बारे में चूंकि हम कभी आए नहीं हैं, तो बताइए कैसा है आपका ये अपना शहर?
1: जी बिल्कुल, मेरे यहाँ पर एक मजार है, दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मिन्नतें लेकर, और हमारे यहाँ पर एक बरेली के पास में आंवला पड़ता है, ठीक है मैम? आंवला शहर है, तो उसमें क्या है कि मनोरा धाम नाम से जो श्याम जी का एक दरबार लगता है, वहाँ पर काफी दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं।
0: क्या बात है, ऐसी श्रद्धा है ना, तो काफी लोग आते होंगे, काफी श्रद्धालु आते होंगे, काफी भक्त जन आते
1: हैं। बिल्कुल मैम, यहाँ पर टूरिस्ट मैं जब जाता हूँ देखता हूँ, टूरिस्ट बसें लगातार लगी रहती हैं, क्योंकि काफी देर के बाद गुरुजी से मिलने का नंबर भी आता है, क्योंकि लाइन काफी लंबी रहती है, तो इस समय यात्री ज्यादा रहते हैं, जो श्रद्धालु ज्यादा है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो लगता है मैम।
0: हाँ खैर, वो तो है ही, जहाँ श्रद्धालु या भक्तगण ज्यादा होंगे तो वहाँ तक पहुँचने में हमें वक्त लगेगा। आप कभी इस लाइन में लगे, इस श्रद्धा के साथ खड़े हुए?
1: जी मैम, मैं वहाँ पर घूमने तो गया हूँ और जल भी लेकर आया।
0: खैर चलिए, इतना फायदा तो आप भी लेंगे ही जब आप वहीं रहते हैं।
1: जो लोग अपने प्रॉब्लम में रहते हैं वो लाइन लगाकर कतार में जरूर खड़े रहते हैं, उनकी जो दुखद समस्या वो सुनाने के लिए गुरुजी
0: को रहते। जी वो किसी विश्वास और श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और वहाँ लाइन में लगते हैं ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल जाए, है ना, इसी भावना के साथ आते हैं। हाँ आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं विमल जी आप?
1: वैसे तो मैम, मैं जब आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इस समय तो हरिद्वार में एक जॉब कर रहा हूँ।
0: अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, और आप हमें कॉल भी कर रहे हैं, हरिद्वार में रहकर भी आप हमें सुन रहे हैं, बहुत
1: बिल्कुल मैम हरिद्वार में रहते हैं, और साथ में हमारे बच्चे भी इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, लव गुनगुन शुभ अमेरी वाय सरका।
0: क्या बात है, चलिए सुनिए आप सभी अपनी पसंद का गीत, बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे।
1: मूवी का नाम रहेगा राम अवतार, इसमें बेहतरीन सुनंगा तेरी बेवफाई का, सिकवा करूँ तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, ये सब सुनवा दीजिएगा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो
1: हेलो जी,
0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: जी जी जी मैम, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: भोपाल से राम बाबू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, और परिवार में भी सब आनंद मंगल में हैं। मम्मी भैया भाभी परिवार में हमारे बच्चे बच्चे सब आनंद और मंगल में हैं।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो कि सब आनंद मंगल से हैं, है ना
1: जी।
0: तो...
1: और हंसी खुशी के साथ, आनंद मंगल के साथ में हम विविध भारती को साथ में रखते हैं, हमेशा चलती रहती है और सुनते रहते हैं। और आपके जिस प्रोग्राम है ना विविध भारती के, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, पूरे परिवार को अच्छे लगते हैं। चलती रहती है विविध भारती हमारे साथ में, और सुनते रहते हैं, काम वाम भी करते रहते हैं। और ये पत्र भी हम अभी डाल के आए आपसे, मतलब बात करी ना उससे 2 मिनट पहले ही मैंने पोस्ट ऑफिस में पत्र डाल के आया हूँ अभी।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं डालने गया तो उनने मेरे को देखा, मैम ने बोले भैया इसमें डाल दीजिए। बोले का उनकी वहां का डाल दीजिए, जी वहां डाल दीजिए। बोले हमको भी एड्रेस बताना ना भैया, आपको गलत बुरा ना लगे तो। मैं ठीक है, मैंने एड्रेस बता दिया उनको। बोले हम भी डालेंगे, हम भी सुनते हैं विविध भारती तो।
0: अरे
1: हाँ जी जी जी बिल्कुल। उनने दोनों मैम में, मतलब मेरे पास में एड्रेस रखा था, उन दोनों ने लिया एड्रेस। बोले हम भी डालेंगे पत्र,
0: क्या
1: हम भी बहुत सुनते हैं, हमारे हस्बैंड और हमारे सास बहुत सुनती है प्रोग्राम।
0: उन्होंने ऐसे कहा जो पोस्ट ऑफिस में बैठी थी महिलाएं।
1: हाँ जी जी जी जी बिल्कुल
0: जी। बहुत अच्छी बात है कि विविध भारती को आप सभी लोग इतना प्यार करते हैं, और जिंदगी बन गई है विविध भारती आपकी, है ना?
1: बहुत बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से बचपन से सुनते हैं, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी मान के चलो। हमारे दादा परदादा भी सुनते थे, जब से रेडियो चालू हुआ जब से। हमारे दादाजी भी सुनते थे, हमारे पापा भी सुनते थे, मैं भी सुनता हूँ, उसके बाद में हमारा बेटा है वो भी सुनता है।
0: अरे
1: अच्छा,
0: आप
1: हमारा बेटा तो बहुत बहुत ध्यान से सुनता है, हमारा वो बेटा है ना, बहुत ध्यान से सुनता है, वो होमवर्क वगैरह भी करता रहता है और सुनता रहता है।
0: क्या बात है। तो आपने अपने दादा को याद किया है, तो दादा नाना की कोई बात याद है आपको ऐसी?
1: जी वो मतलब वो मैं ज्यादा छोटा था उस टाइम, तो वो गुजर गए, तो वो नहीं है, शांत हो गए थे।
0: अच्छा, आप अपने बारे में बताइए फटाफट से, आप क्या करते हैं?
1: अपने ये ड्राई क्लीन का लॉन्ड्री का काम है, वो तो चलता रहता है, विविध भारती हमेशा साथ में रहती है। आपको याद है हमारा काम ही ऐसा है, बिना सुने तो हमारा काम नहीं होता है।
0: चलिए अच्छी बात है, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: जी बिल्कुल, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आज प्रोग्राम में, जैसे दिल है के मानता नहीं, इसी का टाइटल सॉन्ग अनुराधा पौडवाल जी का गाया हुआ गाना सुनना चाहूंगा मैं, और मेरे परिवार वाले सभी सुनना चाहेंगे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हाँ जी मैम नमस्ते, मैं शाहजी नगर देवलूर जिला नांदेड़ से संतोष भाकरे बोल रहा हूँ।
0: संतोष जी कहाँ से बोल रहे हैं? जिला नांदेड़ से।
1: हाँ जी देवलूर।
0: बिल्कुल, कैसे हैं आप संतोष जी?
1: हाँ जी अच्छे हैं मैम।
0: बताइए अपने बारे में, बताइए क्या करते हैं आप?
1: आज बहुत दिनों बाद फोन लगे है तो बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: अरे वाह, पर आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, मुझे तो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही है। पहले अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: बिल्कुल जी, तो मैं प्राइवेट अस्पताल में कंपाउंडर की ड्यूटी करता हूँ।
0: अच्छा, कंपाउंडर की ड्यूटी करते हैं जी, बिल्कुल। तो क्या समय रहता है ड्यूटी का?
1: ड्यूटी का समय डे रहता है मैम।
0: अच्छा, दिन में करते हैं ड्यूटी। अच्छा, पता है कंपाउंडर बनना आसान नहीं होता है ना? बनने का मतलब कि उसको निभाना, उस जो ड्यूटी को निभाना जो है बड़ा मुश्किल है। मुझे याद है एक एक्सीडेंट में एक जो कंपाउंडर थे उन्होंने बहुत समय तक इलाज करने के बाद ही कहा कि माफ करना दीदी, हमें ऐसा बनना पड़ता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। मरीज कितना भी रो रहा है, चिल्ला रहा है, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें अपनी पट्टी गार्ड सब लगाना ही पड़ता है ना?
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है।
1: पेशेंट के साथ साथ पेशेंट के रिलेटिव को भी हमको बोलना पड़ता है।
0: हाँ, रिलेटिव को भी डांटना पड़ता है, मतलब उन्होंने डांट भी दिया कि आप सही से ट्रेल लगाइए, ब्लड नीचे नहीं गिरना चाहिए, है ना। और जब अंतिम दिन उन्होंने जब कहा इस सब बात के बारे में, उन्होंने बताया कि मेरी ड्यूटी में शामिल है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मरीज ठीक नहीं होता है।
1: बिल्कुल मैम, ये सब कुछ बातें सब करना पड़ता है हमें।
0: हाँ
1: आप बराबर पहचाने।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पेशेंट जब गंभीर अवस्था में आते हैं मैम, और जब अच्छे होते जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है हमें,
0: लेकिन उसका इलाज करते समय कठोर बनना पड़ता है ना?
1: बिल्कुल बनना तो पड़ता है मैम।
0: जी जी जी। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, मैं लावारिस फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, आशा भोसले और किशोर कुमार जी की आवाज में, सबके बिछड़े हुए हैं।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: हाँ जी, ये गीत सुना गया, धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, ये हाँ, रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: परभणी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं कई।
0: अच्छा, स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। आपकी विविध भारती 1975-77 से हम सुनते आ रहे हैं और आज भी हमारी सुनने की तमन्ना है। सखी सहेली फॉलो फरमाइश, इसमें मनोरंजन यानी हमारे देश की सुरीली दर्शन हमारे परभणी में नहीं बल्कि हमारे पूरे ओड़ में मशहूर है कई।
0: क्या बात है कितना
1: हमारा रेडियो चलता है और साथ में काम भी चलता है। हम ग्रुप में ऐसा काम करते हैं और रेडियो विविध भारती लगा के रख देते हैं और उसका पूरा सहेली सपना जितने भी प्रोग्राम है उसको का मजा लेते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा और सुरेना मौका बोल तो हमको सखी सहेली सुनने में बहुत मजा आता है कई।
0: क्या अच्छा लगता है आपको सखी सहेली में?
1: इतने अच्छे मीठे मीठे हमारे मंदा जिनी ताई, ममता दीदी जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा काम करते करते काम किधर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि हंसी मजाक और गाने का मनोरंजन आता है तो बड़ा अच्छा लगता है हमको चाहिए।
0: चलिए, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है हमारी बातचीत करने का अंदाज।
1: हाँ जी हाँ, चाहिए आपकी बात, आपकी आवाज यानी हमारा विविध भारती। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हम 1975-77 से हमारे दिल में ख्याल ही आता था जब हम रेडियो सुनते थे तो हम रेडियो से कब बात करेंगे, आपके जैसी हमारी आवाज कब आएंगी। अब देखिए हमको भी समझो कुछ श्रोताओं ने नंबर दे दिया आपका और हमारा भी कॉल बहुत जमाने के बाद लगा, हमें इतनी खुशी हो रही है कि जिसकी हद नहीं।
0: बहुत अच्छी बात है ना कि आपको आपके ही दोस्तों ने नंबर दिया विविध भारती का और आपने हमें कॉल कर लिया।
1: जी हाँ जी हाँ, अच्छा, प्रोग्राम में एक छोटा सा शेर बोलने की अनुमति मिलने चाहिए।
0: बिल्कुल बोलिए बोलिए।
1: जहाँ वहाँ मिले वतन हमारा, ये नए मंजिले ये नए रास्ते कांटों से है इसे बताना।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। आप क्या करते हैं, परभणी में रहते हैं?
1: जी हाँ, परभणी में रहते हैं।
0: तो अपने शहर के बारे में थोड़ा बताइए हमें, परभणी के बारे में बहुत नाम सुना है हमने।
1: एक खूबसूरत मंदिर मोटा मारुति है जो हमारे परभणी के सभी नागरिक वहाँ पे आते हैं, मिलते हैं। और दूसरी खास बात ये है कि हमारे परभणी शहर में हजरत तुराबुल हक की दरगाह है जहाँ का उर्स के लिए बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, देव भक्त आते हैं और दरगाह का पूरा दर्शन करके जाते हैं और इतना बड़ा मेला भरता है जो कि हमारे महाराष्ट्र में तीसरे नंबर पे आता है चाहे वो परभणी हजरत तुराबुल शाह के दरगाह का उर्स यानी मेला।
0: बिल्कुल,
1: ये हर 2 फरवरी को भरता है यहाँ पे परभणी शहर में। बल्कि हमारे अच्छे देश के अच्छे नागरिक और हमारे विविध भारती के ज्यादा से ज्यादा श्रोता आके पूरा मेले का आनंद लेके जाते हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही उम्दा जानकारी आपने दी। कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज के इस प्रोग्राम में हमारा फोन लगा है, सबसे बड़ी तो हमें हमारे को बहुत खुशी हो रही है। एक सरगम फिल्म का नाम है और गाने के बोल है डब्ल्यू वाई डब्ल्यू बजा।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: और वैसे बहुत धन्यवाद।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228702888, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंकुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: Sorte, radio sunba bhai bhaini manka mu jitru bhai juar kholini
1: ar le mu misa radio sunba bhai bhaini manka ari mama toke misa juar kor dilini
0: ni toki aji moke era for jagai dilu je
1: e konai ni mama aji mon bod dukhe gela che
0: kentar je
1: kentar bole e si moda gore jai reli mama
0: aba aba
1: ari konai ni amar si पड़ीसा घर पिला गोटे मामा आरे उचकी हला बोलुसने
0: आपा
1: आजकल पिला मन के काटा कोई पाके मिसा डर लागलानी मामा
0: देखनी
1: ओय आमर बेले मां बापा हमके डांग धर के मारी बोलते रहलो
0: हैं
1: आमे सेंती से सुनी सुनते रहलो सेंते खेलते रहलो खाइते रहलो बोलते रहलो आजकल पिला मन काटा गोटे कोइलाई पुनी तो से जाई गिर उचकी हेगला छे मामा आरी
0: एटा मन होइले ठकी आजकल ये देख मोबाइल मन बारला छे
1: ओय ओय
0: से मोबाइल देखते रह भाई ये से मोबाइल भितरे आहा पुरी री भाई
1: ओय ए मामा
0: एन तारीखर मुंड मन खराब इलानी ई गरी उचकी मलाईनी
1: ओय
0: के कुंती डोवाई मन लानी
1: हे
0: कोई बार खाता इलानी एबे मनी जीवन पाइबा पाई
1: होय होय
0: केते धांदा फांदा
1: आरी
0: ई करी जीवन
1: मारी गोटेक तर तो जीवन मिलला छे मामा आरी गोटेक जन्म के आरी कुकुर बुसकी बिलेय बुसकी हमके जना की सीता गिने ई जीवन खंडे बोल रे रही किरी आमे केते सुंदर ना बंची करी ई पिला मने इंति हला
0: आरी अट खाता दे होय ये सेंती मले फुनी दुमाई डराई डराई बोलबाई
1: ये
0: येले दुमाई डराई डराई सेमन रिवाई पुनी सेमन को मुक्ति नाही
1: मामा
0: हां
1: मोके डराई
0: बोलबाई
1: डराई लुसनी
0: नहीं नहीं नहीं तारा शास्त्र कथा आछे
1: सते की
0: हैं येबे तोर बोईस आछे बोलबे ओसे नौ वर्ष तुई मरी आलुस उचकी योरी 39 वर्ष के बोलार खेत वर्ष मचला
1: ओय
0: 50 वर्ष
1: ओय
0: 50 वर्ष दुमाई योरी आके ताके ताके ताके डोई बोल सुतुई
1: हे
0: छेड़ा अपने हुचकी गोरी मले मुआ फाप मिसा लागसी अर तू नाना हलो कछ गोरी बोल छ
1: हे दे देख लुस इटा मन तो ना जानत मामा रे कोंडे जान लेसी ना
0: हे छेड़ा पाई आ मन पिला ठकी मन के ए तो रामायण वार्ता पर महाभारत वार्ता तोर जेत की धर्म ऊपर कथा वार्ता मन ता मन के ट्रेलिंग देवा
1: कोंडे सिके
0: मंदिर जीवा ता की कुंती जीवा ता एटा मन अभ्यास करेबार आने खाईटा से
1: आजि का मन मिसा तो मामा काम काम बोललो नी आरी पिला के मन के मिसा सीटा मन सिके बागे ना लानी आरी आमर मिसा बोल तो की पिला मन रो मिसा बोल नाई मामा खोंडे गामे मां बापा मन मिसा पिला टोकी मन के प्रत्येक राटू उटा ना करबा खोंडे ओदा ओदी कोई देले पिला मन मिसा सीटा के खोंडे सुनी करी ओगाई दबारा छे दुई लोग जाको मिसा खोंडे बुझवारा छे मामा सत्य नहीं
0: सत सत सत सत कथा कहिलुस हे ये बे एबे देख सेटा ओडे मुआ फाप काम शांति न करबार एड़े सुंदर जीवन मिलला छे ताके हम समान करी जीवार आछे लोके खेते दांदा पांदा गोड नहीं हाथ नहीं हे का राखी दिसे नहीं सेमन बोलबुस बिगुगा मागी करी मिसा बचलाइनी
1: बचलानी गोड
0: लेलेनी होय एते अवस्था रे मिसा हरियाम के सब ठीक ठाक री करी मिसा खाई जाई फाई चन के आमे बिस्कुट खाई देमगी खाईडा कर देम एड़े सुंदर जीवन
1: जीवन मिलला छे
0: एड़े सरदारे मां बाबा जन्म खुला अच से मां बाबा मिसा तो केते भल पाइलेनी हे सेटा भाभी गरी काम करबा एंती पाप काम न करबा
1: नाही बाबू इने मन ए दे मामा कोइला पर आइटा मन के सुनी किरी खंडे जागृत पड़बार आछे पिला टोकी मन मिसा जागृत हेबार आछे एंती काम ना करबा अरे मां बापा मन मिसा

0: के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: इंडिया अप्रोच इज रूटेड इन वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ। वी सपोर्ट अ सेफ सिक्योर पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी। इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर सुनतो कार्यक्रम संपर्क एक विशेष सूचना। चलित मास 12 तारीख शनिवार आकाशवाणी कटक केन्द्र तरफ पूर्वाह्न 10:00-11:00 पर्यंत एक घंटा पाई एक विशेष फोन इन प्रश्नमंच कार्यक्रम सीधा प्रसारण करा। विषय रही सामग्रिक पोषण आमर दायित्व। ए कार्यक्रम विशेषज्ञ भाव जोगदेवे ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय अवसरप्राप्त खाद्य और पुष्टि विज्ञान विभाग विभाग मुख्य प्रोफेसर स्नेहलता नंद एवं श्री रामचंद्र भंज भेषज महाविद्यालय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग अल्पकालिक लाभ

से सरे कोई मिल गया ये चलचित्र शिल्पी आने सान कविता कृष्णमूर्ति एवं बेबी स्नेहा

सिंहदेव समीक्षा करिसेंति। लोकसभा भवन में आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव यह प्रकल्प मध्यम चाउल और मिलेटर मूल्ययुक्त उत्पादन कृषक और स्वयं सहायक गोष्ठीगुड़ी नूतन जीविका सुजोग सृष्टि कर। बैठक में अन्यतम उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जोगद। चलित बर्षर तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आसंता शनिवार दिन अनुष्ठित हेबो। नयागढ़ जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं अधिकार मित्र एवं आईन सेवा प्राधिकरण कर्मचारी पदयात्रा माध्यम लोकमानंकु सचेतन करुछंति। सूचना अनुयायी एहि लोक अदालत रे विभिन्न देवानी और फौजदारी मामला समेत मोटरजान दुर्घटना जनित क्षतिपूरण बैंक ऋण विद्युत जल जोगाण पारिवारिक और वैवाहिक एवं चेक बाउंस भली मामलार आपोष सहमति भित्तिरे समाधान करा जिवो। कंधमाल सांसद सुकांत कुमार पाणिग्राही नयागढ़ जिला गणिया ब्लक में एकाधिक उन्नयनमूलक प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। एहि अवसर में श्री पाणिग्राही मार्केट कम्प्लेक्स अंगनवाड़ी केन्द्र कल्याण मंडप वन सुरक्षा समिति गृह धान संग्रह केन्द्र निर्माण कार्यर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिथिले। आयोजित समारोह स्थानीय अंचल विकास एवं लोकमानंक समस्या समाधान दिगरे गुरुत्व दिया। देवगढ़ जिलार विकास समन्वय एवं तदारख कमिटी दिशा पई जिलापाल कविंद्र कुमार साहू को अध्यक्षतारे प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जाएगी। आसंता 16 तारीख में अनुष्ठित होगा बैठक में संबलपुर सांसद धर्मेन्द्र प्रधान जोगदेवार कार्यक्रम रही। प्रस्तुति बैठक में विभिन्न विभाग अधिकारी विकास कार्यर अग्रगतिमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत रखा निर्देश दी। देवगढ़ जिलापा सम्मेलनी कक्ष में जिलास्तरीय पुष्टिसार कमिटी बैठक अनुष्ठित हो अंगनवाड़ी सेवा अधीन पुष्टिकर सूचक परिपूरक पुष्टिकर गुणवत्ता पोषण बाटिका और अन्य योजना संपर्क में समीक्षा कर। बैठक में जिला समाजमंगल अधिकारी समेत अन्य विभाग अधिकारी उपस्थित थे। नयागढ़ जिला ओडगा रघुनाथ समवाय महाविद्यालय भीमभोई भिन्नक्षम सामर्थ्य शिविर अनुष्ठित होई। शिविर में 223 जन दृष्टि श्रवण और बाक बाधित एवं मानसिक अनग्रसर दिव्यांग पंजीकरण करिथिले। विभिन्न विभाग चिकित्सक माने परीक्षा निरीक्षा करिथिबा जणापड़िछि। पुरी श्रीमंदिर आसंताकाली सप्तपुरी अमावस्या नीति पालित हेबो। एही नीति पई आजिठारु कुंभारपड़ा निकटरे थिबा आम आलमचंडी मंदिर स्वतंत्र भाव प्रस्तुत चारिटी माटी ताड़ श्रीमंदिर को विजे ताड़ श्रीमंदिर रोषघर निकटे रखाई। परंपरा अनुयायी श्रीमंदिर मां दक्षिणकाली मंदिर को आज्ञामाला विजे आसंताकाली मां दक्षिणकाली महाप्रभु सात प्रकार पूरपिठा प्रस्तुत करिबे। पिठा स्वतंत्र भाव माटी ताड़ सकाळ धूप पर लागू विधि रही। आत्महत्या प्रवणताठारु लोकंकु दूरे रखिबा लक्ष्य नै आज विश्व आत्महत्या निवारण दिवस पालन करा जाउछि। प्रत्येक आत्महत्या सामाजिक भावप्रवण एवं अर्थनैतिक परिणामर प्रभाव भाबे विवेचना करा जाइछि। चलित वर्षर विषयवस्तु रहिछि आत्महत्या चिंताधारारे परिवर्तन करिबा। विश्व स्वास्थ्य संगठनर सहभागितारे 2003 मसिहारु एही दिवस पालित होइ आसुछि। पाणिपाग उत्तर बंगोपसागर पार्श्वर्ती अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई। एहार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लागि रही। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर् आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं कलाहांडी और कंधमाल जिला को सतर्क सूचना जारी करा। समय मध्य समुद्र अशांत रहुथिबारु मत्स्यजीवी मानंकु समुद्र मध्यकु जिबाकु बारण करा। ओडिशारे प्राकृतिक संपद शिल्प सामर्थ्य और निवेश अनुकूल परिवेश रही कहिले मुख्यमंत्री। दुबई में विभिन्न शिल्प संस्थार प्रतिनिधि कले आलोचना। राज्य में 4 आयुर्वेदिक और 2 होमियोपैथिक मेडिकल प्रतिष्ठा करिबे सरकार। भुवनेश्वर बैंकक आसंता मास 2 तारीख पुणि थरे आरंभ हेबो विमान सेवा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।

0: खेती से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
1: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
0: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: ये जानी कि एका पाठ पढ़ी हाँ ये इंग्राजी रे मते कोनो झाड़ी पकिले धरिकी आ भाबिले ओ बुझी परबी ने मु भी मो नाती की पचारीबी पाठटा को बुझीबी पंचायत बसिबो
3: ये नवगन भाई जुहारे जुहारे कहा ऊपर एमिति लुणो मंतर आउची की
2: तमे किए मो
3: मु जेमा बापा
2: हरि बोलो जुहारे जुहारे जुहारे हजिला बळद खोजिला ठेई तमे जाउ ठीक समर पहुंचो
3: कोन पाई हां
2: किछि जानिनो
3: ना किछि जानिनो
2: नाही एबे कोन मने पड़िबो
3: ना दियो नी तो पैसा नेबी जिनिस देबी
2: पुनी मो नातु मिठू
3: हां
2: ओहो
3: काहा को तो छाडू नी तमने कोडू आसिलो
2: आ बढ़िया आ को तो जानी की सब तमरो
3: भाई सुनो मु 10 जणिया कथा रे मुंडा पुरे जिनिस पत्र 10 जण मते दायित्व दिया मांडिया जिनिस हला नडिया जिनिस हला बादाम जिनिस हला जहां मो गोष्ठी रे तयारी होउची
2: मांडिया करचो
3: हां मांडिया चाष न कले चलब कहल ये जो भरोसा है सब तो एपटे सेपट हो गला से मांडिया गोटा को अच्छी
2: हाँ कौन कह
3: सी तो पानी हेले भी बढ़ी बो पानी न हेले भी बढ़ी बो ताधरे ते परिश्रम नहीं
2: नहीं नहीं
3: सी ठीक ही अच्छी
2: सारा खतो भी दरकार नहीं
3: जो मान
2: उसे तो ठोपाए पड़ी बो नहीं
3: परिश्रम तो नहीं पैसा रोजगार भलो तार पुणी अच्छी
2: कौन
3: डिमांड अच्छी
2: कौन कहल
3: कौन इंग्लिश सुनने लगी बोल
2: ठीक ही अमितिया कोनो दि चारि पद मते कहि देलो आ मु भी ताकु मने रखी छि हेले को मने पडु छि
3: मने पडुनी जाउ भूली जाय छ भलो आइ छि नले एठी मोर कोन कोन करथा न छाड
2: आ जो जो स्वर्ग गला से कथा से तिकि रे थाउ मांडिया ने लाभ होबो
3: आउ
2: केमिति
3: ए मांडिया रे बा प्रक्रियाकरण करी मांडिया रे बिस्कुट छतुआ केक लडू केते प्रकार तयारी
2: हो जाउ छि मते गोंडा देइ थलो
3: हां देइ थिली आउ थरे जो देइ थिली नुआबो पैसा देकि नै थिले
2: नै थिले
3: हां
2: पैसा भी
3: आउ
2: पुनेलो
3: गोष्ठी रे जे नबो से भी पैसा दबो
2: अच्छा अच्छा अच्छा यार फुनी सरकार सर्वनिम्न सहायक राशि मध्य घोषणा करछो माने लाभ ही लाभ सोता बंधु ए थरक जो प्रकार रो वर्षा हैला बनिया हैला आमे भारी होकल रे पइले
3: हां होकल रे पडिले किंतु आमे पाई सरकार सहाय्य करिछंती
2: करिछंती
3: फसल बीमा योजना अछि
2: अछि
3: सेतिरे आमे भरणा पाउछन
2: पाउछन
3: ता सहित आमे जो सम्मानित कृषि करिछंती माछ चाष कुकुड़ा बतक पालन गोपालन छेली मेढा पालन केते कोन करिछंती बोली गोटिए चाष रो खेती हे गेले आ गोटे चाष रो भरणा हे जाउची
2: हरि बोलो बे लपचिले कुआर कोन जाए सब तो तमरी घरे अछि मोर हेतुर कोन लाभ मिलिला
3: तमर कोन नहि की सब श्रोता बंधु जानि
2: एबे टिके तू नि रहिबो
3: हां रहुची
2: हां सजो घड़ी किछि जणा पडु नै
3: ओ किसान वाणी कार्यक्रम चली छी संध्या बेळ बसी की पल्ली गीत टिए सुनिबा
2: सुनिबा
3: ता पर कथा हबा
2: कथा हबा

0: का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज

0: infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है.
0: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना. उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है. उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए.
0: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल. आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन. लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टेब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040. इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं. दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई. इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं. इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं. एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी. भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है. 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी. शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी. प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं. रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे. संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे. उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए. हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं.
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं. विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है. वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं.

0: दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
1: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी

0: और सर्वश्रेष्ठ AI टेक्नीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरल

0: जून में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन एक स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain, virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero-casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul including a gold. And in Women's Junior Asia Cup Hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions.
2: ISRO withstand

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
0: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।